0: पाछे पावे
1: अन के भोग भिक्षा के करे
0: नावे खम खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: मनोरथ मिठे सब काजे
1: नाम रंग सब सुख होए
0: बड़े भागी

0: राष्ट्रपति
1: संत के दुख ने आज जा कटे
0: संत के दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत के दुखन सुख सब जाए
0: संत के दुखन नरक में पाए
1: संत के दुखन मत होए मलीन
0: संत के दुखन सो बाते हीन
1: संत के हाथे को रखे ना कोए
0: संत के दुखन थान प्रश होए
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भी तरे।

0: की गत मित कोई न लखे।
1: प्रभु के सेवक कहो न पहुँचे,
0: प्रभु के सेवक उचते उचे।
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया,
0: नानक सो सेवक दे जिस प्रगटाया।
1: नीकी कीरी मैकल राखे,
0: पसंद करे लश्कर कोट लाखे।

0: जय आपन ऊच आपन आप नेरा
1: है कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
0: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
1: नानक अपने गत जानो आप
0: जय शल अचेद अपेद समाया
1: मुहा किसे व्यापत माया
0: आप सको आपे आदेश
1: जय गुण का नाही परवेश
0: जय एक

0: राष्ट्रपति।
1: आप कथे आप सुनने हार,
2: आपे एका विस्तार,
1: जातस पावे ता सिष्ट उपाय,
2: अपने पाणे लय समाए,
1: तुम ते पिन नाही कुछ होए।

जठनेपजायो आद अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी।

सुधारा एत श्री त्रित्रयोपख्याने तिरे त्रित्रे मंत्री पूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त अफजू दोहराओ।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याहे। श्री अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरऊ श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याही है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर आय कर नौने दयावे ताय। सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत धन धन। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नार दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां। जना नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही। देख के अमडिठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। जिन्हां सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तन आरिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सां सुवासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान तरके बोलना जी। प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै। चेतावन का सदका सर्ब सुख होए। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सुहाय खालसा जी के बोल वाले बोलना जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहु दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पह दे सदा सहाई दतार दियो। श्री ननकाणा साहिब समूह गुरु धामा दे खुले दर्शन दीदार। सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो। निमाणियां दे माम नितानियां दे ताम ने ओटियां दी ओड़ने आसरियां दे आसरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जिया दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती। आप दिया प्यारियां संगतां वलों सब तो पहला संगती रूप सुखनी साहिब जी दे जाप कीते हन। उपरंत सोदर रहरा साहिब जी दे पाठ होए हन। समुची बाणी पढ़द्या सुनद्या भुल चुक दी खिमा बख्शना। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव संगतां दे दासरियां दे हिरदे ते वसाउणा। सब दियां दर हाजरियां तिर फुल पे ढावां प्रवान करनियां। धरों करो नाम दान चढ़दी कला दी दाद बख्शनी। परिवार में सुख शांति कारोबारां विच वाधे करने अरदास बेनती है संगतां वलों। भाई मनजीत सिंह समूह परिवार नूं आप जी ने नवा ट्रक बख्श किया। सच्चे पातशाह आप दा शुकराना करदिआं अरदास बेनती कृपा करनी जी। किरत कमाइया विच वाधे पाउणे मेरा प्रयास रखना। सच्चे पातशाह जी लिया होया ट्रक सुख ना करना। परिवार दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। भाई तारा सिंह उन्हां दी तंदरुस्ती वास्ते अरदास बेनती कृपा करनी। तंदरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शनियां मेरा प्रयास रखना। सब दियां गुरमत अनुसार मनोकामना पूरियां करनियां। बख्शिया खजानिया विचों कड़ाह प्रसाद दी देख सज के हाजिर है। करी पाक साल सोज पवित्रा हुलाम भोग हर राय। आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु वाहिगुरु जपे। श्री मुख वाग दी बख्शिश करो सही प्यारे मेल जना मिले आम दा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भई अकाल की
ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

अष्टपदे जय मात पिता सुतमीतना पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाय। जय महाभयान दूत दम दला दह केवल नाम संग तेरा चल जय मुश्किल हो बे अत पारी। अर्को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तरह हरको नाम कोट पाप रहर। गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख नेरे सगल सुटको राजा दुखिया। अरका नाम जब दोहे सुखिया लाख करोरी बंद ना पर। अरका नाम जपत निस्व तर अनक माया रंग तिख नाम बुझावे। हरका नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला ते हर नाम संग होत सुहिला। ऐसा नाम मन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परम गत पाइए। छूटत नहीं गोड लख बाही नाम जपत पार पराही अनक बिघन जाए संगारे। हर का नाम तत्काल उदार है

सगल घटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे आपन संगा प्रभराते तुमरी उस तुम ते हुए नानक वरना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म रखो नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में ऊतम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम भला

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानि जंतु साज सवार सिंगारिया गर्भ अगर मैं जने उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध पहर जोबन भोजन सुख सूद बिरध भया उपर साग सैन मुख प्याऊ बैठ का उदयन यह निर्गुण गुण गशुना बुझे बख्श लह तो नानक सिज जे प्रसाद हर प्रसुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघस जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमला जे प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संसाद बसा दीने हस्त पाव कर्ण नेत्र सना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड अंध व्यापे नानक काढ़ पर व्यापे आद अंत जो रख नार तिस्यों प्रीत न करा गवार जाकी सेवा नवृत पावे तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे ज्यो ठाकुर ससदा हजूरे ताकु अंधा जान दूरे जाकी टहल पावे दरगे मान तिसे

कहाँ बुझार तो बुझे डोरा नस गये तो समझे पूरा कहाँ बिसन बद गावे घुंग जतन करे तो भी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आपस गमन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवे ना चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ कै ग्रह पीतर बसे आनंद केर माया रंग रसा दृढ़कर माने मने प्रतीत काल ना आवे मूडे चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहू जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिन सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे गोए ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत

तिस प्रभु को सा सा चितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पतरा है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जय प्रसाद सुने करुणा, जय प्रसाद वेखे बिस्माद, जय प्रसाद।

आओ प्रभु कृपाते हुए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विकास प्रभ सुप्रसन्न बस मन सोए प्रभ दयाते मत उत्तम होए सर्वनिधान प्रभु तेरी मया आपो कशुना किनु हूँ लया

नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्मज्ञानी परोपकार महा, ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्मज्ञानी ले तो अब बंधा, ब्रह्मज्ञानी का हो सपला ब्रह्म।

ब्रह्मज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब प्रहाथ।

राष्ट्रपति संत के दुखन आर जा घट है संत के दुखन जमते नहीं छुटे संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मातोए मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हत को रखे ना कोय संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जय करे नानक संत संग नंदक भीतर है संत के दुखन दे मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्व जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा मैं जलै संत के दुखन सबको शलै।

करे विचार से तन मंत गनी संसार मन तन मुख बोले और मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने एतु तुकियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सा संग हर हर जस गहत सर्व रोग ते हर जन रह तन दिन कीर्तन केवल बखिया।

जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रात गद पावो सारपु सतर को डाओ सहस भाए नान गुन गाओ गुनगाव त्रि उतर समैल बिन जाय हो मैं बिग फैल हुए अचंद बसा सुख नाल सास ग्रासर नाम समहल छाड सियानम सगरी मना सा संग पावे साच तना हर पूंजी संज करो व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको दे कहो नानक जागे मस्तक लेख एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे कसके गुण गाव अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आ पूर्ण पूर्ण पर व्यावन विसार एक देव एक रात बराशत गए मंथन अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक जाता सलोक फिर

व्रत है सुख होए। सेवक ही मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लाई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक इन्नो सदा निहाल। बंधन काट मुख जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया, शिवनी सरदा स पूरी रवरिया सत्संग जूरी। जिसका सतन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जय घाल न भाने, सो क्यों बिसरै जय किया जाने, सो क्यों बिसरै जन सब किश दिया, सो क्यों बिसरै जय जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जय

पायतर ये संसार बिन भक्ति धनम सीशार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सकल दुखा अवतनाश नानक नाम जपो गुंता सुभजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर एहि स्वाओ नेत्रोपेख दर्शक होय मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना के मन दा रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर माया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि मैं कहीं ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभक्षण दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटां कारत प्रतपाल आदि पुरु कारण करतार भगत जनांगे प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरे स्वर्ण स्वर्ण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक नम खरके गुन गायन कराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाए बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भरी सो करनी शोभा तन मंदिर ते बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभु देहनवा सर्व सुख नानक प्रकाश लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानक आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टिता पापो तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत भरक सौ कहो किसे व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तमोह कांग शब्द परमापन खेला वर्तीजा नान करने हार न दूजा जब होबत प्रभ केवल तनी ता बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एका हर अगम अपार तब नर्क स्वर्ग कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव शकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योतर है तब कमन ने डर कमन कत डर जब अपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपना संत है जन्म मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत रेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आविय जर्जा नानक अपन रूप आवियु परजा जय निर्मल पुरख पुरख बातोता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदी तय छल चित्र लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे ते किसे भूकम द्रवतावे करण करावन करने हार नान करते का नाय समार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय भेद

मैं मोह परम व्यापार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा है। खेल संकोचा तो नानक एक है। जपगत भगत आप जपसरे पासार संत प्रताप दूह पाका आपे तने उनकी पुष्पा उन्हों बनी आपे कौतक करे अंत जो जा।

सासंग अगन सागर तरह हर धन के परलिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सासंग भाज परमानंद।

गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हाद राह दूर। कथना कथी ना आवै तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट।

मित गाते अखंड अलिसे कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रनाडय अंडड बाडय चाचरी छंद तव प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे पारे हरि अंग करी अंग निर्नामे कामे पजांग प्रयासन।

पवित्राय प्रथिसे अधिसे अदृश्य कृषे भगवती शांत व प्रसाद कहते के अछज देश है के अपिहज पिहस है के अगांज कर्म है के अपांज भरम है के अपिहज लोक कै के अदित सोक कै के अवतूत वरने के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वरने के सर्वा अपरने

अनुरागे तेरे भुगत स्वरूप है अछेज है अछूत है के नरकंग प्रनाश है पृथ्वी प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद

अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नार नायक है, खालकायक है, विश्वम्पर है, करुणालय है, निरपनायक है, सर्वपायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जप जापन है,

करेंगे, कुड़ स्नान जादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिव पत अंत फसे जम फास भरेंगे।

बिना साजी आप चुनाओ दोए को दे साजी कर आसन जिठो चाओ दाता करता आप तू तुस्ते में करे पसाओ तू जानो सब सह दिल ऐसा जिनकवाओ कर आसन जिठो चाओ कर आसन जिठो चाओ।

परम सम्मान योग जुग जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे ही बड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया

इस बंदे का जिहड़ा मन है वह वड्डा हो जाता है, अपने आप नूं मनुख वड्डा कहण लग पैंदा है। भगत कबीर जी कह रहे ने, कबीर मुकत द्वारा संकुड़ा, वो दरवाजा जिदे विचों दी लंघ के निकलना हुंदा कि मनुख माया दे मोह तों बच जावे, पहला उस दरवाजे चो लंघना पएगा। वो दरवाजा किन्ना छोटा है, भगत कबीर जी कहिंदे ने राई वेखी, राई सरों कह लईए आपां, सरों दा एक दाणा बहुत छोटा दा हुंदा है, उसका भी दसवां हिस्सा। एक राई का दाना किन्ना कु हुंदा है, छोटा जा दाना हुंदा है राई का, सरों का, उसका भी दसवां हिस्सा होवे, इन्ना छोटा वो दरवाजा है जिदे विचों दी लंघ के जाना तो मनुख ये मोह माया के बंधना तो मुक्त हो जा हो सकता है। हुण दरवाजा बहुत छोटा है। राई दसवें पाए मन तो मैगल होए रहो, ये जिहड़ा मन है ये तो हाथी बनिया होया है। हुण जे किते हाथी नूं लंघाणा होवे, किते हाथी ने लंघना होवे, ते उहदे वास्ते फिर दरवाजा भी वड्डा चाहीदा है। इन्ना छोटा दरवाजा है ते हाथी, साडा मन हाथी बनिया होया है, ये उहदे विचों दी किवें लंघे, बहुत मुश्किल काम है, उहदे विचों दी लंघना पएगा। भाव यह है भी जे किते मोह माया दे बंधना तो बचना है, मुक्त होना है, खलासी पाउनी है बंधना तो, ता ओ दरवाजा बहुत नीवा है, बड़ा निम्रता विच जाना पएगा, इस जीवन नू बड़ी निम्रता विच लेके जाना पएगा। निम्रता आपा शब्द वरत लईए इत्थे, क्योंकि मन उच्चा होया पिया है, हंकारिया होया, बहुत ही निम्रता विच अपने जीवन नू लेके जाना पएगा प्यारे आ, तां जाके गल बनेगी। हुण निम्रता विच एवें ते नहीं जाया जांदा, जिस बंदे दा मन हंकारिया होवे वो तां निम्रता दी गल ही नहीं करदा, क्यों करेगा, उहदे कोल तां दुनिया भी सुख सुविधावां होरना नालों ज्यादा हैगीआं। मन तो मैगल, उसका तो यह चंचल मन यह हाथी बनिया पिया है। हुण एक होर मैं थोड़ा जा खुलासा करा, गरीब बंदे दे हाथ बड़ी छेती जुड़ते ने, बड़ी छेती जुड़ते ने, अमीर बंदे दे हाथ बहुत मुश्किल नाल जुड़ते ने। कदे देखिया तुसीं भई अमीर बंदे दे हाथ गरीब दे सामने जुड़ जाने एकदम, हाँ स्वार्थ होवे उन्हों कोई फिर जुड़ जाते हैं। दो ही कारण ने, जो अमीर गरीब दे अगे हाथ जोड़दा उहदे सिर्फ दो कारण ने, जां तां अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सतगुरु जी की उस बंदे ते अपार कृपा है, दुनिया भी धन दौलत बहुत है पर गुरु महाराज की कृपा है, अकाल पुरख की कृपा है, ता उदे हाथ गरीब दे अगे जुड़नगे, जा फिर उदे स्वार्थ होवे कोई स्वार्थी बंदे दे भी हाथ जुड़ जांदे ने एकदम। अपराधी दूणा नहीं वह, जिहड़ा जिसने अपराध करना होवे ना, अंदर लालच चलदा होवे, कोई स्वार्थ पूरा होवे हुंदा होवे किसे तो, वह फिर दो गुणा नहीं जांदा, जिन्ना नीवणा सी उस तो भी ज्यादा नहीं जाता है। अपराधी दूना निवै जो हंता मिर्गा है, हंता दा भाव मारन वाला शिकारी, शिकारी जो शिकार करता है वो अत दा नीवा हो जाता है, इन्ना नीवा हो जाता है, कई शिकारी जो जंगलां चे शिकार खेडन वास्ते जाते ने, वो धरती दे अंदर ही एक गड्ढा बना लेंदे ने, उहदे चे वड़ जांदे।

उस दरवाजे दे विचों दी जिहड़ा अत निक्का है बहुत छोटा दरवाजा है वो हुण इहदी होर आपां थोड़ा जिहा खुलासा करके चंगी तरह समझण दा जतन करिए इस नूं चंगी तरह समझ आ जाए गल क्योंकि दरवाजे की गल कर रहे सतगुरु जी ते मन की गल कर रहे हैं भी ए है ए कम इन्ना सुखा नहीं मोह माया दे बंधना तो मुक्त होना इन्ना सौखा कम नहीं भाओ ये बहुत मुश्किल कम है पर यह मुश्किल कम भी सौखा हो सकता है जे तू गुरु चरणा नाल जुड़ जावे जे तू गुरु की गल सुन के गुरु की गल नू मान लेवे फिर यह कम बहुत सौखा पूजेगा। तरीका दसना किने दसना गुरु ने दसना सानू नहीं तरीके आउंदे असी तो होर फसते जाने होर फसते जाते हुण किसे बंदे नू कंप्यूटर चलाना ना आंदा होवे ते ओ बैठ जे कंप्यूटर ते खोल के भी मैं तो चला लवांगा चला लेंगा वो नहीं चला सकता क्योंकि आउंदा नहीं। जिहड़ा कम बंदे नू आउंदा नहीं बंदा उस कम नू होर बिगाड़ लैंदा भी आंदा तो है नहीं किवें करेगा। हुण इस बंदे नू समझ नहीं आउंदी इस नू समझ भी नहीं भी मैं मोह माया दे बंधना तो मुक्त किवें हो सकदा इह तां गुरु कोल आ के पता लगदा है ते हउमे दा रोग किन्ना वड्डा है गुरु साहब नू ही पुछिए

साहिब जी हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत चाड़ बिखे बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुतदारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाई दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय ਹੋਵੈ ਸਿਵਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਐ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ

आब ताब जाब काब तुही तुही हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहाओ तोरे भरोसे मग हर बस्यो मेरे तन की तबत बुझाई पहले दर्शन मग हर पायो फुन कांसी बसे आई जैसा मग हर तैसी कांसी हम एक कर जानी हम निर्धन ज्यो एहो धन पाया मरते फूट गुमानी कर गुमान चुभ है तिस सूला को काढ़न को नाही अजय सो चोभ को बिलल बलाते नरके घोर पचाही कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो रादे हम काहू के कान न कटते अपने गुर प्रसादे आब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले है सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पछानी संता मानो दूता डानो ए कुटवारी मेरी जब सरैन तेरे पाओ पलोसों केस चबर कर फेरी हम कुकर तेरे दरबार पौकह आगे बदन पसार रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई तेरे द्वारे धुन सहज की माथ मेरे दगाई दागे होए सोरन मह जूझ है बिन दागे भग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर ले खजाने पाई कोठड़े मह कोठरी परम कोठी बिचार गुरदीनी बचत कबीर को लेबो बचत समार

सोहाग जय मुख भेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर कर जाके पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कह काहे मेरे बामन हर ना कह राम पर ना बोल है पांडे दोजक पर है रहाओ आपन ऊच नीच घर भोजन हठे कर्म कर उदर पर है चौदस अमावस रच रच मंग है कर दीपक लै कूप पर है तू ब्राह्मण मैं कासी एक जुलहा मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बन है हमरे राम नाम कह उबरे भेद भरोसे पांडे डूब मर है तरबर एक अनंत डार साखा पह पत्र रस भरिया ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरा करिया जानी जानी रे राजा राम की कहानी अंतर जोत राम परगासा गुरमुख बिरला जानी रहाओ पावर एक पहुप रस बीदा बारह ले उर धरिया सोरह मध्य पवन चकोरिया आकाशे फर फरियम सहज सुन एक बिरबा उपजिया धरती जल हर सोखिया कह कबीर हों ताका सेवक जिन एहो बिरबा देखिया मुंद्रा मोन दया कर झोली पत्र का करो विचार रे खिंथा एहो तन सियो अपना नाम करो आधार रे ऐसा जोग कमाव हो जोगी जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ बुद्ध बपूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुर तो मिलाई कर बराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई पंच तत् लै हृदय रख हो रह नरल मताड़ी कहत कबीर सुनो रे संतो धर्म दया कर बाड़ी कवन काज सिरजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया भाव निद तरन तारन चिंता मन एक निमख न एहो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया तिसकी पाओ भगत नहीं साधी रहा पार धन पार तन पार ती निंदा पर अपवाद न छूट आवा गवन होत है फुन फुन एह प्रसंग न टूट जह कार कथा होत हर संतन एक निमख न कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा

और सुख मना पौने बंद रहाओ गो। चंद सूरज दोए सम कर रखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल मैं पैसो जी जंत न सतावो गो। अठसठ तीर्थ गुरु दिखाए घट ही भीतर नाओ गो। पंच सहाई जन की सोभा भलो भलो न कहावो गो। नामा कहे चित हर सिंह राता सुन समाध समा

समहारे सास सास जाए नामै बिन सो बिरथा सास बिकारे कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी मोको हरजन मेल प्यारे नानक दासन दास कहत है हम दासन के पनहारे नट महला चौथा राम हम पाथर निर्गुण यारे कृपा कृपा कर गुरु मिलाए हम पाहन शब्द गुर तारे रहाओ सदगुरु नाम दरड़ाए अत मीठा मैला गर्म लगारे नामै सुरत बजी है दह दिस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी मैं नीके बचन समहारे गावत गावत हर गुण गाए गुण गावत गुर निस्तारे विवेक गुरु गुरु समदर्शे तिस मिलिया संक उतारे सतगुर मिलिया परम पद पाया हो सतगुर कै बलहारे पाखंड पाखंड कर कर भरमे लोभ पाखंड जग बुरियारे हालत पालत दुखदाई होवै जमकाल खड़ा सिर मारे उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारे आई रैन भया सुपनंतर बिख सुपन पी दुख सारे कलर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ा के खलवारे साकत नर सब भूख पुखाने दर ठाडे जम जंदारे मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी उतरै शब्द विचारे जितने कर्ज कर्ज के मंगिए कर सेवक पग लगवारे जगनाथ सब जंतर उपाए नक खीनी सब नथ हारे नानक प्रभ खिंचै तिब चलिया ज्यों भावै राम प्यारे नट महला चौथा राम हर अमृत सर नावारे सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको मिलकल मल पाप उतारे रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई पड़गु सुआ गनक उधारे परस न परस भय कुबजा कौ लै बैकुंठ सधारे अजा मल प्रीत पुत्र प्रत कीनी कर नारायण बोलारे मेरे ठाकर कै मन पाए भावनी जम कंकर मार बदारे मानक कथ कथ लोक सुनावै जो बोलै सो ना बिचारे सरसंगत मिलै ता दृढ़ता आवै हर राम नाम निस्तारे जब लग जियो पिंड है साबत तब लग किछ न संहारे जब घर मंदिर आग लगानी कड़ कूप कढ़ै पनहारे साकत स्यों मन मेल न करियो हो जिन हर हर नाम बिसारे साकत बचन बिशुआ ज्यो डसिया तज साकत परै परारे लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे पूर्व जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लालन लाल गुलारे जैसा रंग देहे सो होवे क्या नानक जंत विचारे नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे ज्यो कुंचर तंदुऐ पकर चलायो कर ऊपर कड़ निस्तारे रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अतनीके मन सरदा कर हर तारे मेरे प्रभ सरदा भगत मन पावै जन की पैज सवारे हर हर सेवक सेवा लागै सब देखै ब्रह्म पसारे एक पुरख एक नदरी आवै सब एका नदर निहारे

पंच भूत सबल है देही गुर सद गुरु पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे मन नारद बचन पुकारे राम नाम पढ़ो गत पाप हो सर संगत गुर

जब उनवा कन कन हारे साकत को अमृत रस अमृत बहुत सिंच हो सब डाल फूल बिस्कारे ज्यों ज्यों निवा साकत नरसेती छेड़ छेड़ कड्डा बिक खारे संतन संत साध मिल रही है गुण बोले पर उपकारे संत संत मिले मन बिकस ज्यों जाल मिल कमल सवारे लोभ लहर सब स्वान हलक है हलक सब है बिगारे मेरे ठाकर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग लह मारे राख राख राख प्रभ मेरे मैं राखो हो कृपा तारी।

पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सै भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच होवै सिफत खसम दी नूर अरसहों कुरसहों झटी है तुद डिठे सच्चे पात साह मल जन्म जन्म दी कटी है सुकहो टल गुर सेवी है अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसे है गुरु कै

सुतड़े सुखी सवन जो रत्ते सह आपण प्रेम विशोहा धनी सौ अठे पहर लवन।

पतत उदाहरण पार ब्रह्म सम्राथ पुरख अपार जिसे उधारे नानका सो सिमरे सिरजनहार दूजी छोड़ कुवाटड़ी इक ससौ चित लाए दूजै भावी नानका वहन लुड़ंदड़ी जाए।

सुरमानंद भास कर आई, चंद्र बिंब मंगलन सुहाई, सरस अबान ओ आहि बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी।

अष्ट पुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खस्तम मेघ राग वैगा वहे पांचो संग ब्रंगन ला वहे सुरठ गुण मलारी धुनी पुन गावह आसा गुनगुनी

गुरु वाह गुरु अखां बंद करके अखां बंद करके मन एक हुंदा फिर एक नाल जुड़ेगा जदों सुनेगा